0: आवाज़ तैजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ तैजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजी की हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पायान विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीदी राम जो प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे। इस घंटे के मुख्य खबरें, राजकीय नेता के खोवाली जिले की कार्य यात्रा, ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामोहिम अली रहमान ने जॉर्जिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, रूस प्लस मध्य एशिया प्रारूप के तहत ऊर्जा मंत्रियों का संवाद आयोजित किया गया। ये और दूसरी खबरें हमारे इस घंटे में। बीस जून को अपनी कार्य यात्रा के आराम में खातलों प्रांत के खोवालीन जिले में राजकीय नेता मामोहिम अली रहमान ने सबसे पहले आधुनिकीकरण के बाद खोवालीन हवाई अड्डे के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कर उसे प्रयोग में दिया है। हवाई अड्डे के प्रशासनिक भवन में विशाल कार्यक्रम कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, बैठक कक्ष, यात्रियों के स्वागत और विदाई के लिए सुविधाएं तथा एक होटल शामिल है। इसका बुनियादी ढांचा यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त बनाया गया है। हवाई अड्डे की इमारत में कार्य परिस्थितियों का निरीक्षण करते हुए राज्य प्रमुख मामोहिम अली रहमान ने निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की सराहना की और देश के विकास एवं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने में देशभक्त उद्यमियों की रचनात्मक पहल को प्रशंसनीय बताया। ये भी उल्लेख किया गया कि इस परियोजना को अन्य शहरों और जिलों में स्थानीय हवाई अड्डों के निर्माण में आतरे सुधारों के साथ एक उदाहरण के रूप में उपयोग किया जा सका है। इसके अलावा यात्रा के दौरान ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय नेता मामोहिम अली रहमान ने खातलों प्रांत के खोवालीन जिले के मुनकी बस्ती में आसरी वाहदात डेयरी उत्पाद निर्माण कार्यशाला के संचालन का शुभारंभ किया। इस नए औद्योगिक प्रतिष्ठान में 10 से अधिक प्रकार के उत्पादों का उत्पादन शुरू किया गया है, जिसमें करीब

नॉर्वेजियन के क्षेत्र राजनीति के प्राथमिक क्षेत्रों में बदल गए हैं। उन्होंने कहा है कि ताजिकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के ढांचे के भीतर बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार का समर्थन करता है। ताजिकिस्तान गणराज्य वर्ष 2018 में शंघाई सहयोग संगठन विश्वविद्यालय परियोजना में शामिल हुआ था और वर्तमान में देश के 10 उच्च व्यावसायिक शिक्षा संस्थान इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। हाल के वर्षों में 1700 से अधिक ताजिक छात्रों ने शंघाई सहयोग संगठन विश्वविद्यालय के संयुक्त कार्यक्रमों में भाग लिया है, जबकि 300 से अधिक युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने संगठन के सदस्य देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ताजिकिस्तान के शिक्षा और विज्ञान मंत्री ने रूस और चीन के विश्वविद्यालयों के साथ दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, शिनजियांग कृषि विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त 1+1+2 शिक्षा मॉडल, रोबोटिक्स, पर्यावरण, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के विकास का उल्लेख किया। उन्होंने संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाओं की बढ़ती संख्या को शिक्षा ने सहयोग के विकास का संकेत बताया। रहीम सईदजोदा ने शंघाई सहयोग संगठन के हरित प्रौद्योगिकी गलियारा स्थापित करने की पहल का समर्थन किया और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों, हरित अर्थव्यवस्था तथा उच्च योग्य विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ताजिकिस्तान के योगदान की तत्परता व्यक्त की। ताजिक और फारसी साहित्य के अमार क्रेती शाहनामा के प्रसिद्ध रचयिता हकीम अबुल कासिम फिरदौसी के एक दुर्लभ प्रति जो ईरान इस्लामी गणराज्य में उच्च गुणवत्ता वाली मॉडर्न तकनीक और आधुनिक पुस्तक सच्चा कला के साथ प्रकाशित की गई थी और ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम अली रामों को बहन की गई थी, अब राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय के अनुसार ये मूल्यवान कृति प्रकाशक मनुचेर फरुखजोद की पहल पर सीमित संख्या में केवल 12 प्रतियों में प्रकाशित की गई है। राष्ट्रीय नेता द्वारा ताजिक लोगों की संस्कृति, इतिहास और साहित्य विरासत के संरक्षण एवं विकास में निरंतर ध्यान और महत्वपूर्ण योगदान तथा ताजिक फारसी साहित्यकारों और विचारों की मूल्यवान रचनाओं के प्रति विशेष सम्मान को देखते हुए इस दुर्लभ संस्करण की एक प्रति मामहिम इमाली रहमान को बहन की गई। राष्ट्र के नेता के निर्देश पर ये अनमोल उपहार राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंप दिया गया। वर्तमान समय में ये पुस्तक ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमाली रहमान को प्राप्त उपहारों की प्रदर्शनी दीर्घा में संग्रहालय के नियमों के अनुसार एक विशेष स्थान पर नागरिकों और देश के मेहमानों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई है। ये प्रति लिखित विरासत और उच्च कोटि की पुस्तक सज्जा कला के एक दुर्लभ उदाहरण के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य रखती है। ये पुस्तक इतिहास, पांडुलिपि, कला और फारसी भाषी लोगों के साहित्यिक विरासत के अध्ययन के लिए विशेष महत्व रखती है। प्यारे सुनने वालों, ये थी हमारे ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। प्यारे सुनने वालों, एक मधुर संगीत सुनने के बाद हमारे संवाददाता नुशोफरीन ओलिमोवा आपको योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। हमारे रेडियो के साथ रहिए।

0: आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य योगा के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर योगा और इसके लाभों के बारे में इस समय हम बात करते हैं गीतिका सिंह योगा ट्रेनर के साथ। गीतिका, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी, हमारे श्रोताओं को योगा के बारे में बताइए, क्या है योगा, किस प्रकार की होती है, इसका मतलब क्या है?
2: जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद नौशीन। श्रोताओं को बहुत बहुत मेरा प्रणाम और नमस्कार। आप सबको बस मैं यही बताना चाहती हूँ, ये योगा दिवस हम क्यों मना रहे हैं, इसका क्या फायदा है, ये क्यों जुड़े हुए हैं, योगा कितनी पुरानी प्रथा है। योगा अगर आप माने तो कुछ लोग कहेंगे 3000 साल से ज्यादा पुरानी प्रथा है। इसको हम आप कहेंगे एक वे ऑफ लाइफ है, मतलब आपके जीवन शैली का ये एक अनुभव है जो आप रोज अनुभव करते हैं, ये है योगा। ये सिर्फ आसन, प्राणायाम, योग बंधन, मुद्रा, ये सारी चीजें का मिलन और मिश्रण है, और ध्यान, धारणा, तपस्या, इसका भी एक मिश्रण है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और जो भी कोई योगा सीखता है या जो भी कोई योगा सिखा रहा है वो अभी भी योगा सीख ही रहा है। आप योगा सिर्फ सीख सकते हैं और उसमें धीरे धीरे अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप अपने आप को कैसे अनुभव करते हैं? हम कई बार ये सोचते हैं कि हम कौन हैं। जैसे आपने मुझे अभी इंट्रोड्यूस किया, आपने कहा कि मैं योगा ट्रेनर हूँ, मैं एक पर्यावरण से संबंधित कार्यकर्ता भी हूँ और मैं जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पे भी काम करती हूँ। योगा मेरा शौक है, मैं बचपन से योगा करती हूँ और मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ योगा की। तो ये क्यों है मेरा शौक, क्योंकि बचपन से ही मैंने ये देखा इसके काफी लाभ हैं। जब हम लोग छोटे थे और हमें जब योगा सिखाया जाता था तो हमें ये बोला जाता था कि इससे आपकी अवेयरनेस, कॉन्सेंट्रेशन और एक्सलेंस होगी, यानी कि आपकी जागरूकता बढ़ेगी, एकाग्रता होगी और उत्कर्षता बढ़ेगी। ये क्यों होता है एक व्यक्ति के अंदर जरूरी, इसलिए व्यक्ति के लिए जरूरी होता है ताकि आप अपने जीवन के सामान्य काम अच्छी तरह से कर सके। को एक छोटा सा ही उदाहरण लेते हैं, प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। क्या है प्राणायाम? प्राणायाम होते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया। सांस लेने की प्रक्रिया से क्या लाभ है? काफी लोग यही कहेंगे कि अरे मुझे तो सांस लेना आता है तो मुझे सांस लेना सीखने की क्या जरूरत है। परंतु कई बार ऐसा होता है जब आप जब भी कोई सिचुएशन या स्थिति होती है, जब आप गुस्सा होते हैं या आपका मन शांत नहीं होता है, तो अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो श्वास है, जो सांस है, वो चल रही है। यू आर ब्रीदिंग फास्टर। व्हेन यू ब्रीथ फास्टर, जब आप थोड़ा सा ठीक से ज्यादा ब्रीथ करते हैं तो आपका दिमाग संतुलित नहीं होता है। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं तो अनेक प्रकार की प्राणायाम की प्रक्रिया, एक है इक्वल ब्रीदिंग, यानी कि दोनों तरफ से एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे और गिनती करेंगे। सपोजिंग आपने गिनती की 1 2 3 और सांस लिया 1 2 3 और आपने सांस छोड़ा, अगर आप 2 बार 3 बार इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर एक संतुलन बिल्ड हुआ।
1: जी, इस तरह जो सांस है वो ब्रेन तक और पूरे शरीर पे चला जाता है और इससे कुछ सरलता एहसास होता है।
2: जैसे आपने बिल्कुल सही कहा नौशीन, जब हम ऐसे सांस लेते हैं और हमें सपोजिंग किसी कोई वृद्ध है या कोई छोटा बच्चा है या हम बहुत स्ट्रेस में है, आजकल स्ट्रेस बहुत चला हुआ है, स्ट्रेस एक फैशन हो गया है कि हर एक चीज को लेकर हम लोग बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं, अरे भाई इतना सारा काम है कैसे करेंगे। तो उस समय अगर आप इस टाइप की प्रक्रिया या इसी प्रकार की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हम सब कर सकते हैं, यही योगा है। आपको योगा लचीलापन भी देगा, आपको वो दिमाग की स्थिरता भी देगा, ये योगा है।
1: मुझे उम्मीद है कि अभी जो हमारे श्रोता है उन्होंने भी हमारे साथ ये अभ्यास किया और खुद को भी एहसास हुई कुछ। तो देखिए, योगा जो है वो बस शारीरिक नहीं है जैसा कि आपने कहा, वो मुझे लगता है कि जो फीलिंग्स होते हैं पर्यावरण की तरफ ध्यान या ये सब फील करने, नेचर को फील करने के लिए ये मदद करता है। आपकी नज़र क्या है इसमें? आप एक्सपर्ट है, ज्यादा जानते हैं इस पर।
2: जैसे मैंने कहा, मैं खुद एक पर्यावरण में काम करने वाले कार्यकर्ता हूँ। मैं काफी सालों से, 15 सालों से मैं इन्वायरमेंट पे और क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पे काम कर रही हूँ। क्यों ये योगा से जुड़ा हुआ है? क्योंकि क्या है, जब आप खुली हवा में बैठ के, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। सूर्य नमस्कार क्या है? सैल्यूटेशन टू द सन, यानी कि आप सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: उसके कुछ आसन है, 12 उसके राउंड्स होते हैं, 6 आसन होते हैं। जब हम इन आसनों को करते हैं बाहर खुली हवा में, आप सूर्य के सामने वो आसन कर रहे हैं। अब शहर के भीड़ भाड़ में ये आप नहीं कर पाएंगे इतनी अच्छी तरह से, लेकिन अगर आप किसी पार्क में बैठे हो, आसपास आपके फूल फल पेड़ चिड़िया, अगर मधुमक्खी भी हो तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी अजीब सी जगह पे हैं। एज ह्यूमन बींग, जो हम लोग हैं, मनुष्य का जो थॉट है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, उसका जो मानसिक स्थिति है, वो हमेशा नेचर में जाके जब ऐसी जगहों पे जाएंगे तो शांत हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उसी से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और हम लोग जैसे प्रगति करते जा रहे हैं और जीवन के आत-पात में इतने मशगूल हो गए हैं कि हमें लगता है कि अरे ये सब तो छूटता जा रहा है। तो एज एन एनवायरमेंटलिस्ट और एक कार्यकर्ता के हिसाब से, किसी भी व्यक्ति को जब आप नेचर से जुड़ते हैं तो आप बहुत शांत और स्थिर अपने आप को पाते हैं। किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो नेचर में बैठ के उसको लगेगा कि अरे ये तो गलत हो रहा है। हाँ, अगर डिजास्टर या कोई ऐसी अनुभव आपको आए, जैसे बाढ़ हुई या अर्थक्वेक हुआ, भूकंप आया, तब वो बात अलग है। वो नेचर का अपना तरीका है दिखाने का। परंतु जब आप नॉर्मल स्थिति में हैं, जब आपका जीवन ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं, पेड़ पौधे पास हैं, तो आपका मन खुश रहता है। यही है उसके लिंकेज, और ये अभी से नहीं, सालों से चला रहा है, हजारों हजारों सालों से।
1: शायद यही कारण है कि बस इंडिया में नहीं, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि आपने कहा, लोग बहुत व्यस्त है काम पे, तो सोचते हैं कि अगर कुछ अभ्यास करें, योगा नहीं बस दूसरे स्पोर्ट पे, उनका टाइम लगता है उस पे, तो कितना टाइम अभ्यास करना है, योगा करना है दिन में?
2: अगर आपको योगा करने में कितना टाइम आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जो भी मेरा कभी कोई स्टूडेंट आते हैं, मेरे पास 15 साल के बच्चे भी आते हैं, 7 साल के से भी ज्यादा बड़े बुजुर्ग आते हैं, और काफी लोग ये बोलते हैं कि अच्छा मेरा तो, और ऑफिस वाले जाने वाले लोग जो है वो कहते हैं पर मेरे पास तो सुबह टाइम ही नहीं होता है, मुझे तो ऑफिस के 8 बजे निकलना है, तो फिर मैं कैसे कर लूं योगा? योगा के अनेक प्रकार हैं। आप अगर 5 मिनट ध्यान करें, मेडिटेशन, वो भी पार्ट ऑफ योगा है, वो आपके मानसिक स्थिति को संतुलित रखेगा, यानी कि यू विल हैव अ बैलेंस्ड माइंड। अगर आपके, आप दिन में 5-10 मिनट तो निकाल सकते हैं, कभी भी रास्ते में आते जाते ही कुछ ध्यान कर ले, जप कर ले, वो भी योगा है। और अगर हम शारीरिक स्तर पे बोलें कि अगर आप फिजिकली अपनी बॉडी को एजाइल करना चाहते हैं, तो आपको जो सहज योगा है, यानी कि जो बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस होती हैं, वो भी अगर आप करेंगे रेगुलरली, जिसमें 5-7 मिनट लगते हैं, ताकि आपकी बॉडी में लचीलापन बना रहे। और अगर आप आसन करना चाहते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो आप आधा घंटा से 40 मिनट में अच्छी तरह से अपने आप को फिजिकली वार्म अप करके, फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम करके थोड़ा सा मेडिटेट कर लें, तो वो भी किया जा सकता है। जितना आपके पास समय है उस अनुसार आप योगा कर सकते हैं।
1: जी देखिए, कहता है कि योगा कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है, ये खासकर कौन सी बीमारियां होती हैं?
2: ये मोस्टली जो आपकी बीमारियां होती हैं, अधिकतर जो बीमारियां आपकी होती हैं, वो होती हैं स्ट्रेस रिलेटेड या लाइफस्टाइल चेंजेस।
1: अच्छा।
2: अगर शरीर का मोटापन आ रहा है, तो आप अगर थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में लचक आएगी, आपके शरीर के अंदर बल आएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी बॉडी की। और अधिकतर लोगों के पास आजकल यही है कि बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है और एक लेथार्जी आ गई है, एक तमस फैल जाता है, बॉडी फील करने लगती है। तो ये है, डायबिटीज जैसे बीमारियों को भी वो धीरे धीरे आप ठीक कर सकते हैं सही प्रकार के योगासन के अनुसार। क्या योगा ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक करता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रकार के प्राणायाम कर रहे हैं तो वो ठीक कर सकता है। क्या वेट लॉस के लिए योगा पॉपुलर है? बिल्कुल है, वेट लॉस लिए योगा काफी पॉपुलर है. इनफैक्ट अगर आप देखें काफी सारे इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं योगा को अपने और अलग अलग प्रकार के योगा करते हैं अपनी बॉडी को लोग ज्यादा लचीला बनाने के लिए, ज्यादा फिट बनाने के लिए. लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को और मैं आपके श्रोताओं को भी ये कहना चाहूंगी, कभी जरूरत से ज्यादा ना करें क्योंकि इंजरीज भी होती हैं. तो जितना नियमित हो उस हिसाब से करें, धीरे धीरे करें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं. जैसे आप अगर आज आए हैं नए नए तो मैं आपको योगा कराऊंगी 15 से 20 मिनट का. उसमें आपको शवासन भी करना बहुत जरूरी है. शवासन होता है लाइंग लाइक अ बॉडी नॉर्मल. आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं योगा करने के बाद. काफी लोग उसको स्किप करते हैं, इसलिए शवासन भी बहुत जरूरी होता है. बॉडी रिलैक्सेशन, बॉडी वार्म अप के जितना ही जरूरी होता है. तो ये सारी चीजें हैं जो अगर आप पूरे रूप से एक स्टेप वाइज अगर आप उसको करें तो उससे आपको काफी फायदा होता है. मैं खुद अपना उदाहरण देती हूँ. कोविड के समय क्योंकि हम लोग घर में मोस्टली बैठे हुए थे, कुछ काम नहीं होता था, तो मैंने वजन पुट ऑन किया क्योंकि इतना काम नहीं कर पा रहे थे. बाहर नहीं जा रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, स्टेप्स नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो वजन बढ़ा. तो मैंने अलग प्रकार का योगा शुरू किया जिसमें मैंने 2-3 आसन अपने बढ़ाए ताकि अंडर द गाइडेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर. उस समय तब मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं थी. जब मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से बात की कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया कि 2 आसन आप ये कर लीजिए. एक होता है त्रिकोण आसन, यानी कि आप ट्रायंगल साइडवेज ट्रायंगल फॉर्म बनाए. वो आसन अगर आप करते हैं तो उससे क्या है, आपकी कमर की जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ा सा लचीलापन उसमें बढ़ता है, उससे आपका थोड़ा वेट लॉस होता है. तो अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिससे आप अपना वजन घटा सकते हैं. क्या आप योगा से अपना वजन बढ़ा सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही टाइप का डाइट लें उसके साथ. योगा और आयुर्वेदा दोनों जुड़े हुए हैं. तो जैसे मैंने कहा, योगा सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है कि आप एक प्रकार के एक्सरसाइज या एक प्रकार के व्यायाम करें और उससे आपका शरीर ठीक हो जाए. उसमें आपको सही टाइप का खाना भी खाना पड़ेगा, आपको सही टाइप का ब्रीदिंग पैटर्न यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया आनी चाहिए आपको. आपको सही हिसाब से और इतना समय दे के अपने बॉडी को, जैसे आपने वार्म अप किया है उसको रिलैक्स करना जरूरी है. ये सारी चीजें मिल मिला के एक अच्छा योगा रूटीन माना जाता है.
1: जी, मैं यही आपसे पूछने वाले थे कि योगा करते समय जब ट्रेनिंग होता है, अभ्यास होता है, तो उस पे कोई खास डाइट रखा जाता है या लोग जो भी चाहते हैं वो खा सकते हैं?
2: जो आइडियल डाइट होता है, जो हम लोग जब योगा सीखने जाते हैं तो हमें बोला जाता है सात्विक खाना. अब सात्विक खाना क्या है? सात्विक खाना है वेजिटेरियन डाइट.
1: अच्छा.
2: वेजिटेरियन डाइट जिसमें प्याज और लहसुन भी नहीं होता है, इस प्रकार का डाइट हमें दिया जाता है जब हम योगा सीखने जाते हैं. क्योंकि हमें बताया जाता है और किसी कोई भी जब सीखने जाएगा कि नियमित खाओ, उससे तुम्हारे शरीर का विकास होगा. तो अगर आप खा रहे हैं परंतु क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ये लगता है कि आप सिर्फ वेजिटेरियन नहीं खा रहे, अगर आपका डाइट मीट बेस्ड भी है तो नियमित खाएं. जितना आपके शरीर को जरूरी है उतना खाएं. पानी भी नियमित पिए, जब आपको जरूरत लगे तब आप पानी पिए. और सभी प्रकार के खाना खान पान का आप सेवन करें. हाँ, एक चीज जरूर मैं कहूंगी, अगर जो जैसे जिनको सिगरेट पीना है या स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, उसको थोड़ा कम करने से उनके लिए योगा के बेनिफिट्स ज्यादा होंगे. क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें भी करेंगे और आपके अलग प्रकार की अगर कोई लत है, वो आपके योगा के अभ्यास को थोड़ा सा पीछे कर देगी. आपके जो जो पूरे नियम अनुसार करेंगे वो बिल्कुल ठीक से उसके रिजल्ट्स पाएंगे. जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि मैम मैं स्मोक करता हूँ, तो अगर आप स्मोक करते हैं तो मैं उनसे यही कह सकती हूँ, अगर आप छोड़ नहीं सकते तो धीरे धीरे कम कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका अभ्यास भी बढ़ेगा. आपका अगर आपको अपनी लंग कैपेसिटी बनानी है, यानी अपने आपको अपने फेफड़े आपको ठीक करने हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप धीरे धीरे जिस चीज की लत है उसको धीरे धीरे छोड़ दें. एक साथ तो करेंगे तो वो हो तो नहीं पाएगा, धीरे धीरे करके अगर आप उसको कम करेंगे तो उससे काफी फायदे हैं.
1: आजकल लोगों का ध्यान योगा की तरफ कितने है इंडिया में? खासकर
2: इंडिया में हमेशा से योगा काफी ही प्रचलित रहा है. लोग अभी भी योगा करते हैं। मैं लेकिन अब मैं ये भी कहूंगी कि हमारे देश में अब जिम कल्चर भी आ गया है, वो बात अलग है। अब जिम में भी वो योगा के आसन सिखाते हैं, काफी सारे जो स्ट्रेचिंग के मतलब पोजेस होते हैं, जो स्ट्रेच अप्स होते हैं, जो मॉडर्न डे जिम की होती हैं, वो भी योगा से ही निकले हुए हैं। क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप कहीं से उठा के तो लेकर नहीं आएंगे। जैसे साइकिलिंग है, साइकिलिंग भी एक योगा आसन है। तो लोग अगर सोचते हैं कि अच्छा मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, साइकिल पे कर रहे हैं, या अब अगर आप लेट कर अपने पैर के बल पे कर रहे हैं, वो भी एक योगासन है। योगा इस तरीके से इवॉल्व हो चुका है, पहले भी था और अब भी है, कि अब योगा के आसन भी हमारे जरूरतों के हिसाब से बदल रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। ट्रेडिशनल योगा मेथड वही थे, लेकिन क्योंकि योगा जैसे मैंने कहा एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन शैली का एक पार्ट है, तो जो भी एक्सरसाइज कर रहा है उसमें आपको कहीं ना कहीं योग का पार्ट मिलेगा, चाहे वो व्यक्ति एक्चुअल योगा प्रैक्टिशनर हो या ना हो।
1: और हम अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के बारे में बात कर रहे थे, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के अवसर पे हिंदुस्तान पे कोई प्रोग्राम्स बनाया जाता है, लोगों को इकट्ठे करके योगा करते हैं, इसके बारे में कुछ सूचित कीजिए हमें।
2: जी बिल्कुल, होते हैं। इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो हमारे क्योंकि इंडिया में, भारत में ये शुरू किया गया है, तो जैसे मैं एक योगा इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ, तो वहां पे वो प्री कैंप्स कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो योगा सिखाते हैं, अलग अलग प्रकार के योग के शैलियां हैं, उसके भी सारे इंस्टीट्यूट के लोग फ्री कैंपेन्स कर रहे हैं, कम्युनिटी गेट टूगेदर्स कर रहे हैं। मेरे घर के पास ही एक पार्क है, वहां पे रोज सुबह 6 बजे सब लोग आके इकट्ठा होके योगा करते हैं, और ये बिल्कुल निशुल्क है, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे आपके स्कूल्स में योगा डे जब होता है, तो आज मेरे ख्याल से कुछ स्कूलों में, अधिकतर स्कूलों में लोगों ने, बच्चों ने योगा किया होगा, और टीचर्स का भी योगा क्लासेस होते हैं, कॉर्पोरेट की भी योगा ट्रेनिंग होती है और सेमिनार्स होती हैं, जो मैंने सुना है आजकल हो रही है, जो मेरे साथ जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है हमें, वो भी बता रहे थे। तो योगा हर एक जगह कोई ना कोई किसी ना किसी इवेंट या गेट टुगेदर के तरह हो रहा है। मैं तो ये भी कहूँ कि हमारे कुछ जैसे इंस्ट्रक्टर्स है जो बाहर अलग अलग देशों में है, वहां पे भी उन्होंने वर्चुअली योगा एक साथ कम्युनिटी बना के उन्होंने प्रैक्टिस किया है। तो योगा हर एक जगह लोग अपने अपने स्तर पे मना रहे हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ही नहीं, रोज अगर आप करें तो ही उसका ज्यादा महत्व है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए।
2: थैंक यू बहुत बहुत मुबीन आपका, और मैं उम्मीद करती हूँ लोगों ने जो भी मैंने कहा उससे कुछ उनको अच्छा लगा। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप समय समय पर योगा के बारे में और भी लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: थैंक यू। आदरणीय श्रोताओं, आपको याद दिलाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर योगा और योगा के लाभों के बारे में हमने बात की गीतिका सिंह, योगा ट्रेनर के साथ। अब एक गाना सुनकर गुजर जाता है दूसरे कार्यक्रम में, हमारे साथ रहिए।

उन्होंने संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाओं की बढ़ती संख्या को शिक्षा सहयोग के विकास का संकेत बताया। रहीम सैजोदा ने शंघाई सहयोग संगठन के हरित प्रौद्योगिकी गलियारा स्थापित करने की पहल का समर्थन किया और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों, हरित अर्थव्यवस्था तथा उच्च योग्य विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तशिस्तान के योगदान की तत्परता व्यक्त की। तजिक और फारसी साहित्या के अमार क्रेती शाहनामा के प्रसिद्ध रचयिता हकीम अबुल कासिम फिरदौसी के एक दुर्लभ प्रति जो ईरान इस्लामी गणराज्य में उच्च गुणवत्ता वाली मुद्रण तकनीक और आधुनिक पुस्तक सच्चा कला के साथ प्रकाशित की गई थी और तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम अली रामों को बहन की गई थी अब राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है। तजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय के अनुसार ये मूल्यवान कृति प्रकाशक मनुचेर फरुखजोद की पहल पर सीमित संख्या में केवल 12 प्रतियों में प्रकाशित की गई है। राष्ट्रीय नेता द्वारा ताजिक लोगों की संस्कृति, इतिहास और साहित्य विरासत के संरक्षण एवं विकास में निरंतर ध्यान और महत्वपूर्ण योगदान तथा ताजिक फारसी साहित्यकारों और विचारों की मूल्यवान रचनाओं के प्रति विशेष सम्मान को देखते हुए इस दुर्लभ संस्करण की एक प्रति मामहिम इम अली रहमों को बहन की गई। राष्ट्रीय नेता के निर्देश पर ये अनमोल उपहार राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंप दिया गया। वर्तमान समय में ये पुस्तक तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इम अली रहमों को प्राप्त उपहारों की प्रदर्शनी दीर्घा में संग्रहालय के नियमों के अनुसार एक विशेष स्थान पर नागरिकों और देश के मेहमानों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई है। ये प्रति लिखित विरासत और उच्च कोटि की पुस्तक सज्जा कला के एक दुर्लभ उदाहरण के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य रखती है। ये पुस्तक इतिहास, पांडुलिपि, कला और फारसी भाषी लोगों के साहित्यिक विरासत के अध्ययन के लिए विशेष महत्व रखती है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। प्यारे सुनने वालों, एक मधुर संगीत सुनने के बाद हमारे संवाददाता नुशोफरीन ओलिमोवा आपको योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। हमारे रेडियो के साथ रहिए।

0: आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य योगा के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर योगा और इसके लाभों के बारे में इस समय हम बात करते हैं गीतिका सिंह योगा ट्रेनर के साथ। गीतिका, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी, हमारे श्रोताओं को योगा के बारे में बताइए, क्या है योगा, किस प्रकार की होती है, इसका मतलब क्या है?
2: जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद नौशीन। श्रोताओं को बहुत बहुत मेरा प्रणाम और नमस्कार। आप सबको बस मैं यही बताना चाहती हूँ, ये योगा दिवस हम क्यों मना रहे हैं, इसका क्या फायदा है, ये क्यों जुड़े हुए हैं, योगा कितनी पुरानी प्रथा है। योगा अगर आप माने तो कुछ लोग कहेंगे 3000 साल से ज्यादा पुरानी प्रथा है। इसको हम आप कहेंगे एक वे ऑफ लाइफ है, मतलब आपके जीवन शैली का ये एक अनुभव है जो आप रोज अनुभव करते हैं, ये है योगा। ये सिर्फ आसन, प्राणायाम, योग बंधन, मुद्रा, ये सारी चीजें का मिलन और मिश्रण है, और ध्यान, धारणा, तपस्या, इसका भी एक मिश्रण है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और जो भी कोई योगा सीखता है या जो भी कोई योगा सिखा रहा है वो अभी भी योगा सीख ही रहा है। आप योगा सिर्फ सीख सकते हैं और उसमें धीरे धीरे अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप अपने आप को कैसे अनुभव करते हैं? हम कई बार ये सोचते हैं कि हम कौन हैं। जैसे आपने मुझे अभी इंट्रोड्यूस किया, आपने कहा कि मैं योगा ट्रेनर हूँ, मैं एक पर्यावरण से संबंधित कार्यकर्ता भी हूँ और मैं जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पे भी काम करती हूँ। योगा मेरा शौक है, मैं बचपन से योगा करती हूँ और मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ योगा की। तो ये क्यों है मेरा शौक, क्योंकि बचपन से ही मैंने ये देखा इसके काफी लाभ हैं। जब हम लोग छोटे थे और हमें जब योगा सिखाया जाता था तो हमें ये बोला जाता था कि इससे आपकी अवेयरनेस, कॉन्सेंट्रेशन और एक्सलेंस होगी, यानी कि आपकी जागरूकता बढ़ेगी, एकाग्रता होगी और उत्कर्षता बढ़ेगी। ये क्यों होता है एक व्यक्ति के अंदर जरूरी, इसलिए व्यक्ति के लिए जरूरी होता है ताकि आप अपने जीवन के सामान्य काम अच्छी तरह से कर सके। को एक छोटा सा ही उदाहरण लेते हैं, प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। क्या है प्राणायाम? प्राणायाम होते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया। सांस लेने की प्रक्रिया से क्या लाभ है? काफी लोग यही कहेंगे कि अरे मुझे तो सांस लेना आता है तो मुझे सांस लेना सीखने की क्या जरूरत है। परंतु कई बार ऐसा होता है जब आप कोई भी जब भी कोई सिचुएशन या स्थिति होती है, जब आप गुस्सा होते हैं या आपका मन शांत नहीं होता है, तो अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो श्वास है, जो सांस है, वो चल रही है। यू आर ब्रीदिंग फास्टर। व्हेन यू ब्रीथ फास्टर, जब आप थोड़ा सा ठीक से ज्यादा ब्रीथ करते हैं तो आपका दिमाग संतुलित नहीं होता है। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं तो अनेक प्रकार की प्राणायाम की प्रक्रिया, एक है इक्वल ब्रीदिंग, यानी कि दोनों तरफ से एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे और गिनती करेंगे। सपोजिंग आपने गिनती की 1 2 3 और सांस लिया 1 2 3 और आपने सांस छोड़ा। अगर आप 2 बार 3 बार इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर एक संतुलन बिल्ड हुआ।
1: जी, इस तरह जो सांस है वो ब्रेन तक और पूरे शरीर पे चला जाता है और इससे कुछ सरलता एहसास होता है।
2: जैसे आपने बिल्कुल सही कहा नौशीन, जब हम ऐसे सांस लेते हैं और हमें सपोजिंग कोई किसी कोई वृद्ध है या कोई छोटा बच्चा है या हम बहुत स्ट्रेस में है, आजकल स्ट्रेस बहुत चला हुआ है, स्ट्रेस एक फैशन हो गया है कि हर एक चीज को लेकर हम लोग बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं, अरे भाई इतना सारा काम है कैसे करेंगे। तो उस समय अगर आप इस टाइप की प्रक्रिया या इसी प्रकार की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हम सब कर सकते हैं, यही योगा है। आपको योगा लचीलापन भी देगा, आपको वो दिमाग की स्थिरता भी देगा, ये योगा है।
1: मुझे उम्मीद है कि अभी जो हमारे श्रोता है उन्होंने भी हमारे साथ ये अभ्यास किया और खुद को भी एहसास हुई कुछ। तो देखिए, योगा जो है वो बस शारीरिक नहीं है जैसा कि आपने कहा, वो मुझे लगता है कि जो फीलिंग्स होते हैं पर्यावरण की तरफ ध्यान या ये सब फील करने, नेचर को फील करने के लिए ये मदद करता है। आपकी नज़र क्या है इसमें, आप एक्सपर्ट है, ज्यादा जानते हैं इस पर?
2: जैसे मैंने कहा, मैं खुद एक पर्यावरण में काम करने वाले कार्यकर्ता हूँ। मैं काफी सालों से, 15 सालों से मैं इन्वायरमेंट पे और क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पे काम कर रही हूँ। क्यों ये योगा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्या है, जब आप खुली हवा में बैठ के, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। सूर्य नमस्कार क्या है, सैल्यूटेशन टू द सन, यानी कि आप सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: उसके कुछ आसन है, 12 उसके राउंड्स होते हैं, 6 आसन होते हैं। जब हम इन आसनों को करते हैं बाहर खुली हवा में, आप सूर्य के सामने वो आसन कर रहे हैं। अब शहर के भीड़ भाड़ में ये आप नहीं कर पाएंगे इतनी अच्छी तरह से, लेकिन अगर आप किसी पार्क में बैठे हो, आसपास आपके फूल फल पेड़ चिड़िया, अगर मधुमक्खी भी हो तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी अजीब सी जगह पे हैं। एज ह्यूमन बींग, जो हम लोग हैं, मनुष्य का जो थॉट है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, उसका जो मानसिक स्थिति है, वो हमेशा नेचर में जाके जब ऐसी जगहों पे जाएंगे तो शांत हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हम उसी से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और हम लोग जैसे प्रगति करते जा रहे हैं और जीवन के आसपास में इतने मशगूल हो गए हैं कि हमें लगता है कि अरे ये सब तो छूटता जा रहा है। तो एज एन एनवायरमेंटलिस्ट और एक कार्यकर्ता के हिसाब से, किसी भी व्यक्ति को जब आप नेचर से जुड़ते हैं तो आप बहुत शांत और स्थिर अपने आप को पाते हैं। किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो नेचर में बैठ के उसको लगेगा कि अरे ये तो गलत हो रहा है। हाँ, अगर डिजास्टर या कोई ऐसी अनुभव आपको आए, जैसे बाढ़ हुई या अर्थक्वेक हुआ, भूकंप आया, तब वो बात अलग है, वो नेचर का अपना तरीका है दिखाने का। परंतु जब आप नॉर्मल स्थिति में हैं, जब आपका जीवन ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं, पेड़ पौधे पास हैं, तो आपका मन खुश रहता है। यही है उसकी लिंकेज, और ये अभी से नहीं, सालों से चला रहा है, हजारों हजारों सालों से।
1: शायद यही कारण है कि बस इंडिया में नहीं, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि आपने कहा, लोग बहुत व्यस्त है काम पे, तो सोचते हैं कि अगर कुछ अभ्यास करें योगा नहीं बस दूसरे स्पोर्ट पे, उनका टाइम लगता है उस पे, तो कितना टाइम अभ्यास करना है, योगा करना है दिन में?
2: अगर आपको योगा करने में कितना टाइम आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जो भी मेरा कभी कोई स्टूडेंट आते हैं, मेरे पास 15 साल के बच्चे भी आते हैं, 7 साल के से भी ज्यादा बड़े बुजुर्ग आते हैं, और काफी लोग ये बोलते हैं कि अच्छा मेरा तो, और ऑफिस वाले जाने वाले लोग जो है वो कहते हैं पर मेरे पास तो सुबह टाइम ही नहीं होता है, मुझे तो ऑफिस के 8 बजे निकलना है, तो फिर मैं कैसे कर लूं योगा? तो योगा के अनेक प्रकार हैं। आप अगर 5 मिनट ध्यान करें, मेडिटेशन, वो भी पार्ट ऑफ योगा है, वो आपके मानसिक स्थिति को संतुलित रखेगा, यानी कि यू विल हैव अ बैलेंस्ड माइंड। अगर आपके, आप दिन में 5-10 मिनट तो निकाल सकते हैं कभी भी, रास्ते में आते जाते ही कुछ ध्यान कर ले, जप कर ले, वो भी योगा है। और अगर हम शारीरिक स्तर पे बोलें कि अगर आप फिजिकली अपनी बॉडी को एजाइल करना चाहते हैं, तो आपको जो सहज योगा है, यानी कि जो बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस होती हैं, वो भी अगर आप करेंगे रेगुलरली, जिसमें 5-7 मिनट लगते हैं, ताकि आपकी बॉडी में लचीलापन बना रहे। और अगर आप आसन करना चाहते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो आप आधा घंटा से 40 मिनट में अच्छी तरह से अपने आप को फिजिकली वार्म अप करके, फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम करके थोड़ा सा मेडिटेट कर लें, तो वो भी किया जा सकता है। जितना आपके पास समय है उस अनुसार आप योगा कर सकते हैं।
1: जी देखिए, कहते हैं कि योगा कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है, ये खासकर कौन सी बीमारियां होती है?
2: ये मोस्टली जो आपकी बीमारियां होती है, अधिकतर जो बीमारियां आपकी होती है वो होती है स्ट्रेस रिलेटेड या लाइफस्टाइल चेंजेस।
1: अच्छा।
2: अगर शरीर का मोटापन बढ़ रहा है, तो आप अगर थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में लचक आएगी, आपके शरीर के अंदर बल आएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी बॉडी की। और अधिकतर लोगों के पास आजकल यही है कि बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है और एक लेथार्जी आ गई है, एक तमस फैल जाता है, बॉडी फील करने लगती है। तो ये है, डायबिटीज जैसे बीमारियों को भी वो धीरे धीरे आप ठीक कर सकते हैं सही प्रकार के योगासन के अनुसार। क्या योगा ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक करता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रकार के प्राणायाम कर रहे हैं तो वो ठीक कर सकता है। क्या वेट लॉस के लिए योगा पॉपुलर है? बिल्कुल है, वेट लॉस के लिए योगा काफी पॉपुलर है. इनफैक्ट अगर आप देखें काफी सारे इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं योगा को अपने और अलग अलग प्रकार के योगा करते हैं अपनी बॉडी को लोग ज्यादा लचीला बनाने के लिए ज्यादा फिट बनाने के लिए. लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को और मैं आपके श्रोताओं को भी ये कहना चाहूंगी कभी जरूरत से ज्यादा ना करें क्योंकि इंजरीज भी होती हैं. तो जितना नियमित हो उस हिसाब से करें, धीरे धीरे करें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं. जैसे आप अगर आज आए हैं नए नए तो मैं आपको योगा कराऊंगी 15-20 मिनट का. उसमें आपको शवासन भी करना बहुत जरूरी है. शवासन होता है लाइंग लाइक अ बॉडी नॉर्मल. आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं योगा करने के बाद. काफी लोग उसको स्किप करते हैं इसलिए शवासन भी बहुत जरूरी होता है. बॉडी रिलैक्सेशन बॉडी वार्म अप के जितना ही जरूरी होता है. तो ये सारी चीजें हैं जो अगर आप पूरे रूप से एक स्टेप वाइज अगर आप उसको करें तो उससे आपको काफी फायदा होता है. मैं खुद अपना उदाहरण देती हूँ. कोविड के समय क्योंकि हम लोग घर में मोस्टली बैठे हुए थे कुछ काम नहीं होता था तो मैंने वजन पुट ऑन किया क्योंकि इतना काम नहीं कर पा रहे थे. बाहर नहीं जा रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, स्टेप्स नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं तो वजन बढ़ा. तो मैंने अलग प्रकार का योगा शुरू किया जिसमें मैंने 2-3 आसन अपने बढ़ाए ताकि अंडर द गाइडेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर. उस समय तब मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं थी. जब मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से बात की कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया कि 2 आसन आप ये कर लीजिए. एक होता है त्रिकोण आसन यानी कि आप ट्रायंगल साइडवेज ट्रायंगल फॉर्म बनाए. वो आसन अगर आप करते हैं तो उससे क्या है आपकी कमर की जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ा सा लचीलापन उसमें बढ़ता है. उससे आपका थोड़ा वेट लॉस होता है. तो अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिससे आप अपना वजन घटा सकते हैं. क्या आप योगा से अपना वजन बढ़ा सकते हैं? हाँ वो भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सही टाइप का डाइट लें उसके साथ. योगा और आयुर्वेदा दोनों जुड़े हुए हैं. तो जैसे मैंने कहा योगा सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है कि आप एक प्रकार के एक्सरसाइज या एक प्रकार के व्यायाम करें और उससे आपका शरीर ठीक हो जाए. उसमें आपको सही टाइप का खाना भी खाना पड़ेगा. आपको सही टाइप का ब्रीदिंग पैटर्न यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया आनी चाहिए. आपको आपको सही हिसाब से और इतना समय दे के अपने बॉडी को जैसे आपने वार्म अप किया है उसको रिलैक्स करना जरूरी है. ये सारी चीजें मिल मिला के एक अच्छा योगा रूटीन माना जाता है.
1: जी मैं यही आपसे पूछने वाले थे कि योगा करते समय जब ट्रेनिंग होता है अभ्यास होता है तो उस पे कोई खास डाइट रखा जाता है या लोग जो भी चाहते हैं वो खा सकते हैं?
2: जो आइडियल डाइट होता है जो हम लोग जब योगा सीखने जाते हैं तो हमें बोला जाता है सात्विक खाना. अब सात्विक खाना क्या है? सात्विक खाना है वेजिटेरियन डाइट.
1: अच्छा.
2: वेजिटेरियन डाइट जिसमें प्याज और लहसुन भी नहीं होता है. इस प्रकार का डाइट हमें दिया जाता है जब हम योगा सीखने जाते हैं क्योंकि हमें बताया जाता है और किसी कोई भी जब सीखने जाएगा कि नियमित खाओ उससे तुम्हारे शरीर का विकास होगा. तो अगर आप खा रहे हैं परंतु क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ये लगता है कि आप सिर्फ वेजिटेरियन नहीं खा रहे, अगर आपका डाइट मीट बेस्ड भी है तो नियमित खाएं. जितना आपके शरीर को जरूरी है उतना खाएं. पानी भी नियमित पिए. जब आपको जरूरत लगे तब आप पानी पिए और सभी प्रकार के खाना खान पान का आप सेवन करें. हाँ एक चीज जरूर मैं कहूंगी, अगर जो जैसे जिनको सिगरेट पीना है या स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं उसको थोड़ा कम करने से उनके लिए योगा के बेनिफिट्स ज्यादा होंगे. क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें भी करेंगे और आपके अलग प्रकार की अगर कोई लत है वो आपके योगा के अभ्यास को थोड़ा सा पीछे कर देगी. आपके जो जो पूरे नियम अनुसार करेंगे वो बिल्कुल ठीक से उसके रिजल्ट्स पाएंगे. जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि मैम मैं स्मोक करता हूँ, तो अगर आप स्मोक करते हैं तो मैं उनसे यही कह सकती हूँ अगर आप छोड़ नहीं सकते तो धीरे धीरे कम कर दीजिए क्योंकि इससे आपका अभ्यास भी बढ़ेगा और आपका अगर आपको अपनी लंग कैपेसिटी बनानी है यानी अपने आपको अपने फेफड़े आपको ठीक करने हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप धीरे धीरे जिस चीज की लत है उसको धीरे धीरे छोड़ दें. एक साथ तो करेंगे तो वो हो तो नहीं पाएगा. धीरे धीरे करके अगर आप उसको कम करेंगे तो उससे काफी फायदे हैं.
1: आजकल लोगों का ध्यान योगा की तरफ कितने है इंडिया में? खासकर
2: इंडिया में हमेशा से योगा काफी ही प्रचलित रहा है. लोग अभी भी योगा करते हैं। मैं लेकिन अब मैं ये भी कहूंगी कि हमारे देश में अब जिम कल्चर भी आ गया है, वो बात अलग है। अब जिम में भी वो योगा के आसन सिखाते हैं, काफी सारे जो स्ट्रेचिंग के मतलब पोजेस होते हैं, जो स्ट्रेच अप्स होते हैं, जो मॉडर्न डे जिम की होती हैं, वो भी योगा से ही निकले हुए हैं। क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप कहीं से उठा के तो लेकर नहीं आएंगे। जैसे साइकिलिंग है, साइकिलिंग भी एक योगा आसन है। तो लोग अगर सोचते हैं कि अच्छा मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, साइकिल पे कर रहे हैं, या अब अगर आप लेट कर अपने पैर के बल पे कर रहे हैं, वो भी एक योगासन है। योगा इस तरीके से इवॉल्व हो चुका है, पहले भी था और अब भी है, कि अब योगा के आसन भी हमारे जरूरतों के हिसाब से बदल रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। ट्रेडिशनल योगा मेथड वही थे, लेकिन क्योंकि योगा, जैसे मैंने कहा, एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन शैली का एक पार्ट है, तो जो भी एक्सरसाइज कर रहा है उसमें आपको कहीं ना कहीं योग का पार्ट मिलेगा, चाहे वो व्यक्ति एक्चुअल योगा प्रैक्टिशनर हो या ना हो।
1: और हम अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के बारे में बात कर रहे थे, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के अवसर पे हिंदुस्तान पे कोई प्रोग्राम्स बनाया जाता है, लोगों को इकट्ठे करके योगा करते हैं, इसके बारे में कुछ सूचित कीजिए हमें।
2: जी बिल्कुल, होते हैं। इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो हमारे, क्योंकि इंडिया में, भारत में ये शुरू किया गया है, तो जैसे मैं एक योगा इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ, तो वहां पे वो फ्री कैंप्स कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो योगा सिखाते हैं, अलग अलग प्रकार के योग के शैलियां हैं, उसके भी सारे इंस्टीट्यूट के लोग फ्री कैंपेन्स कर रहे हैं, कम्युनिटी गेट टूगेदर्स कर रहे हैं। मेरे घर के पास ही एक पार्क है, वहां पे रोज सुबह 6 बजे सब लोग आके इकट्ठा होके योगा करते हैं, और इस ये बिल्कुल निशुल्क है, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिसे आपके स्कूल्स में योगा डे जब होता है, तो आज मेरे ख्याल से कुछ स्कूलों में, अधिकतर स्कूलों में लोगों ने, बच्चों ने योगा किया होगा, और टीचर्स का भी योगा क्लासेस होते हैं, कॉर्पोरेट की भी योगा ट्रेनिंग होती है और सेमिनार्स होती हैं, जो मैंने सुना है आजकल हो रही है, जो मेरे साथ जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है हमें, वो भी बता रहे थे। तो योगा हर एक जगह कोई ना कोई, किसी ना किसी इवेंट या गेट टुगेदर के तरह हो रहा है। मैं तो ये भी कहूँ कि हमारे कुछ जैसे इंस्ट्रक्टर्स है जो हर अलग अलग देशों में है, वहां पे भी उन्होंने वर्चुअली योगा एक साथ कम्युनिटी बना के उन्होंने प्रैक्टिस किया है। तो योगा हर एक जगह लोग अपने अपने स्तर पे मना रहे हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ही नहीं, रोज अगर आप करें तो ही उसका ज्यादा महत्व है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका, इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें, थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए।
2: थैंक यू बहुत बहुत मुबीन आपका, और मैं उम्मीद करती हूँ लोगों ने जो भी मैंने कहा उससे कुछ उनको अच्छा लगा। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप समय समय पर योगा के बारे में और भी लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: थैंक यू। आदरणीय श्रोताओं, आपको याद दिलाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर योगा और योगा के लाभों के बारे में हमने बात की गीतिका सिंह, योगा ट्रेनर के साथ। अब एक गाना सुनकर गुजर जाता है दूसरे कार्यक्रम में, हमारे साथ रहिए।